सुबह मत धर्म रख थारंगा का नुबा आस तनिन नुबे सीमली वादन नसु सनिन हितवा मंगी डोरे इवराई कियला ए तितिन दा नद हित पुदे मुलावा कियला दवसिन दवसे अदि मटे वटा हुना खंदलु पिसलाई कियो हित पोयाम मगे अस्तित कला पाबो

0: मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार, ओ मेरे यार।
1: धन्यवाद यालो आदरी बेहती बन ना आदरे ऐति करेगा ना उन्हें देख मैं हन्ना मत बावत ते वागे इबे ऐति बन ना मत बावत ऐति करेगा ना उन्हें

किंदुरली सुबमान नरम रैक वेवा थरंगा अपे आदरे टा उरु दु हाता गयो ना एक लस्सना आदरे समारो हंड्रेड वाशी वेन वा रूप टा निरंकार कमट आदम आदम ब्रकमट और नम गड़ाक दे वाल वलट इधे ऐत ते हम क्यों वा एक तरह उपान दिने क माँग में ऐत तीरने कर पे लस्सन माल पकर रातुपाट एक माँग अपे मता क्वेन पाली लस्सन वीद्रु पेट्टी के दांपत कला इन्ना को पेन्नन ऐम के लक्तर दावस कमाट एक पेन्नो ते कला सनाद्रा नवेद ए तरंगा भी बेंगुना तरह ही नवेद ये वटे के हेतु बाल पैवा ये पांगे हट लसना नागत एकला बने के लहम दाम प्रार्थना करना पांग श्यामा

इतना भी पास मत आओ कि दूर जाना मुश्किल हो। उच्चरक लंगन ने पा आई एम दुरा सुन बेरी वे।